0: about that shit.
1: Oh, Guruji. Gagan damama bajeo, pareo nishane kao, khet jo mandyo surma, ab zujan ko dao. परम पूज्य अकाल सर्वशक्तिमान वाणी के वो हित चबर शतर दे मालिक हजूरे अनबर सर्वरे कायनात शब्द गुरु तान सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज तिना दी हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यार वाले आओ साहिबां दी बख्शिश कीती हुई फतेह और वाहेगुरु गुरु मंत्र दा सिमरन करदे आं। करो बेनती प्रवान झुकाओ सीस अदब सहित आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज श्रीमान संत बाबा गुरवचन सिंह जी पिंडरां वाले महापुरख उन्हां दी बरसी समागम है दिन दे दीवान दे विच उन्हां दे बाबत विचार टूक मात्र विचार दी सांझ पाई सी और शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी भी अज बरसी है जिन्हां दा प्रसंग दिन दे दीवान दे विच कहण दा जतन कीता सी। भगत कबीर साहिब जिन्हां दा भी अज जन्म दिहाड़ा है ते नाल दी नाल सिख इतिहास साढ़े कोल तीन तरह का इतिहास है गुर इतिहास सिख इतिहास ते कौमी इतिहास। गुर इतिहास धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज तो लैके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज तक यह सारा गुर इतिहास है। सिख इतिहास बाबा बंदा सिंह बहादुर तो लैके शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह तक ते कौमी इतिहास अजोके समय ते जेड़े कौम दे उपरों आपा निशावर कर गए अपना नाम इतिहास दे सुनहरी पन्नियां दे विच लिखा के चल गए उन्हूं कौमी इतिहास आने आप

हां जी, खली पाठ इसे तरह पोला ही करना, लमेरियां पंक्तियां जमक ठमक विश्राम दा, साध संगत जी ध्यान रखना, तू भन्नन घड़न समर्थ दा तार है, जिदा है पाठ ते विश्राम लाउणा, समर्थ ते जमक लाउणी, तुद अगे मन्नन नू इथे ठमक ला के, हाथ जोड़ थोड़ा जिहा ठहरा ला के, खली सब होई।

नहीं, बोलना ते पवन करके देही माटी बोले पवन, बोलन हार परम गुर ए, बोल के ही संबंध जुड़ते ने, बोल के ही संबंध टूटते ने। कुछ ऐसा बोले है, बोल होंदा है कि ओपरा बेगाना अपना हो जाता है। कुछ जबान चो ऐसे बोल निकलते हैं, मुद्दतों की मित्रता दुश्मनी च बदल जाती है। एक बोल, एक बोल, एक बोल ऐसा है बंदे नू तपा के रख सकता है, शायद सारी रात तड़पदा रहे, पर जे एक बोल तड़पा के रख सकता है, एक बोल शांत भी कर सकता है, सुकून भी दे सकता है। खेड़ते सारी बोलां दी है, मनुखी दुनिया दी सारी हलचल बोलचाल ते खड़ी है। ये भी मैं अर्ज कर दें, सारे संबंध भी बोलचाल ते खड़े ने। मनुख कह देंदे उत्थे साडी बोलचाल है जिथे संबंध होवे, जिथे संबंध ना होवे कहिंदा उत्थे साडी बोलचाल कोई नहीं। जिथे संबंध गूड़े होवन कहिंदा उत्थे साडी बोलचाल बड़ी चंगी है, जिथे ना होवे भई साडी बोलचाल ही कोई नहीं। संबंध जुड़दे ने बोलन करके, ते बोलना पवन करके। इन्हां पंज तत्तां दे चो पवन नूं गुरु नानक ने गुरु कहा, क्योंकि इस करके ते बोलना वाहेगुरु वाहेगुरु ताई रसना जत सदी अंदर श्वास चलन पवन है। भावे पानी पिता है, भावे धरती मां है, पर पवन ते गुरु है, संबंध जोड़ता है परमात्मा। ऐसा कुछ बोलना है, मोह के बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार, कुछ है ऐसा बोलना कि परमात्मा नाल संबंध जुड़ता है। कुछ है ऐसा बोलना संसार नाल संबंध जुड़ता है, परिवार नाल संबंध जुड़ता है। जिड़े बोल परिवार नाल संबंध जोड़ते हैं, संसार नाल संबंध जोड़ते हैं, उन्होंने कहते हैं शब्द। तो जिड़े बोल परमात्मा नाल संबंध जोड़ते हैं, उन्होंने कहते हैं गुर शब्द। रोशनी नाल भरे हुए शब्द ने, चानने नाल भरे हुए शब्द ने। खैर संक्षेप विच मैं अर्ज करा, मनुख 90% प्रगट भी बोलना तो होता है, ता मर्द सुखन ना गुफ्ता बाशद है वो हुनर ने गुफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक मनुख बोले ना, गुण औगुणा का पता ही नहीं चलता। क्रोधी है कि शांतमयी है, कि जल्दबाज है कि धीरजमान है, मूर्ख है कि सयाण है, धार्मिक है कि अधार्मिक है, सत्संगी है कि कुसंगी है, बोल दस देंदे। हत्थां तो कुछ नहीं पता चलता, पैरां तो कुछ नहीं पता चलता, मुंह मत्थे तो भी कुछ नहीं पता चलता, बोलां तो पता चलता है। ता मर्दे सुखन ना गुफ्ता बाशद ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। ये नेचर तक बंदा बोले ना, कख नहीं पता चलता। कुछ ऐसा बोलना है जिदे च परमात्मा है, कुछ ऐसा बोलना है जिदे च लोभ है, कुछ ऐसा बोलना है जिदे च अहंकार है, कुछ ऐसा बोलना है जिदे च निरंकार है। तो इस तरह के बिखड़े शब्द जिन्हां दे अर्थ करन लगिया मनुख धोखा खा सकदा सी, भुलेखा खा सकदा सी, भाई गुरदास कोल ले। इस वास्ते भाई गुरदास जी की बाणी नूं आख्या गया कुंजी, इहदे ताले नूं खोल दी, शब्दां नूं खोल दी। इत्थे आखो शरीर की गल, शरीर की गल नहीं। महाराज कहिंदे ने अखां कोई नहीं, कन कोई नहीं, जबान कोई नहीं, पैर भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं टुंडे, पैर भी कोई नहीं लंगड़े, जबान भी कोई नहीं गुंगे, कन भी कोई नहीं बहरे, अखां भी कोई नहीं अंधे। इतने सारी अंग भंग हो गए। भाई गुरदास जी ध्यान नाल सुनना, भाई साहब कहिंदे ने देखबे को ना दृष्ट, ना दर्श दिखाए बे को, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। हे गुरु तैनों देख सका, मेरे को अखां कोई नहीं। ते जिड़िया अखां हैगिया ने इहदे नाल तो दिखाई नहीं देंदा। भाई गुरदास देखबे को ना दृष्ट, ना दर्श दिखाए बे को, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाई। कहबे को ना सुरत, ना सरवन सुनबे को, कैसे प्रिय निद्रगुन सुनिए सुनाई। हे गुरु तेरे तक मैं बोल पुचा सका, जबानी कोई नहीं, पर तेरे बोल मैं सुन सका, मेरे को कान नहीं कोई नहीं। भाई गुरदास कहबे को ना सुरत,
ना सर्व

इस गंदे चिंतन नु रोज रोज देखने आ, आखिर इस दे अंदर घृणा पैदा हो जाएगी। पर बदकिस्मती मनुख अपने नेड़े आउंदा ही नहीं। इस वास्ते शेख सादी साहब कहिंदे ने, तेरे बारे दूसरे का फैसला गलत होवेगा। दूसरा की जानता है तेरे की विचार ने, तू की सोचता रहना। यह जो मैं अर्ज कर दिया, 100% लोग दूजियां बारे गलत फैसले करते, गलत फैसले करते। ये पापी है, ये पुन्नी है, ये तो कहण मात्र गल्लां होंगी। पर महाराज कहते ने, कहण मात्र खेड नहीं है। पुन्नी पापी आखण ना है, कर कर करना लिख ले जा। जो असी करते हैं, जिस कर्म दे च मन आउंदा है, वो अंदर लिखिया जाता है, उसे वक्त लिखिया जाता, संस्कार बन जाता है। जिस कर्म दे च मेरा मन है, उस कर्म दे संस्कार बन जाते हैं। जिस कर्म दे च मेरा मन नहीं है, उसके संस्कार नहीं बनते, अंदर लिखिया नहीं जाता। चोरी अंदर लिखी जाती है, क्यों? उहदे च मेरा पूरा मन आउंदा है, समाज का डर है, कानून का डर है, बाणी का पाठ मेरे अंदर नहीं लिखिया जाता, ना मेरी सावधानी आती है, ना मेरी एकाग्रता आती है, ना समाज का डर, ना कानून का डर। किसी भी शुभ कर्म के अंदर संस्कार नहीं बनते, बुरे कर्मों के बनते, क्योंकि बुरे कर्म नो मनुख पूरे मन नाल करता। समाज का डर है, कानून का डर है, शुभ कर्म नो मनुख पूरे मन नाल नहीं करता। हर एक कह देंदा की करिए, मन ते जुड़दा ही नहीं। पर जब तू झूठ बोलदा उहदे च पूरा मन आउंदा है, जब तू किसे नू ठगदा है उहदे च तेरा पूरा मन आउंदा है, जब तू किसे नू धोखा देंदा उहदे च तेरा पूरा मन आउंदा है, जब जेब कतरा किसे दी जेब कटदा उहदे च पूरा उसका मन आउंदा है। बड़ी भारी एकाग्रता आउंदी। किसे जेब कतरे ने नहीं आख्या, जेब कटन लग्या मैं एकाग्र किवें आऊंगा। किसी डकैत ने नहीं आख्या, डाका डालन लग्या मैं अपना मन एकाग्र किवें करा, एकाग्र हो जाता है। हर अभ्यासी ने आख्या, हर सत्संगी ने आख्या, की करिए मन ते जुड़दा ही नहीं, मन ते एकाग्र ही नहीं आता। कारण क्यों नहीं एकाग्र आता? ना समाज का डर, ना कानून का डर। ते परमात्मा का डर बंदा मने ना तो गल खत्म, सारी जिंदगी कर्मकांड चलता रहेगा, होवेगा कुछ भी। ते पता है कर्मकांड किसनों कहते ने? जिस विच मन पूरा नहीं है, नहीं है। ये भी मैं अर्ज कर, पूरी भावना है, पूरा मन है, हर कर्म भक्ति हो जाता है, भगवान नाल जोड़ देता है। कोई मन नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई यकसोई नहीं है, ये तो कर्मकांड चलता रहता है। कर्मकांड जन्म तो तन दे अंदर भोजन दी भुख है, मन दे अंदर भजन दी भुख नहीं है। कारण मन रोगी है, इस जन्म दा नहीं, अनंत जन्मा तो, अनंत जन्मा तो रोगी है और बेहोश है, अचेत है, भुख नहीं है। जिहड़ा वाहेगुरु वाहेगुरु का जप है, थोड़ा इसनों सुचेत करना है तो किधरे इस दे अंदर भुख पैदा हो जाए। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागाए। जैसे मनुख पूरी एकाग्रता नाल वाहेगुरु कहिंदा है, वाहेगुरु का अंदर संस्कार बन जाता है। जैसे वाहेगुरु का संस्कार बनता है अंदर, विकारां दे बने अंदर संस्कार वो मिटते हैं, खत्म होते। ये दोवें कट्ठे नहीं रह सकते, या नाम का संस्कार रहेगा या काम का संस्कार रहेगा, या सबर संतोख का संस्कार रहेगा या लोभ का रहेगा, दोवें कट्ठे नहीं रहते, एक दूजे नूं मिटा देंदे ने। ये भी मैल्स करते हैं। संतोख और नाम एकाग्रता दे नाल ना जपया ना पढ़िया बाणी नो तो विकारां दे संस्कार बनते जाणगे। कर कर करना लिख ले जा। जिहड़ा कम असी पूरे मन

0: नानक कहूं नसी जई बिन नामे पत जाए अष्टपदी।
1: दस बसूले पाछे पावे,
0: एक बस्त कारण बिखो टकवावे,
1: एक पीना दे दस पी हिरले,
0: दो मूड़ा को कहां करे,
1: जिस ठाकुर से ना ही जारा,
0: ठाकुर की जय सद नमस्कार,
1: जाके मन लगा प्रमीठा,
0: सर्व सुखता हूँ मन बुठा,
1: जिस जन अपना हुक्म मनाया,
0: सर्व सुख नानक चिन पाया,
1: अगंत शाह अपनी दे रास,
0: हाथ पीत बरते अनंत उलास,
1: अपनी ईमान कछ बहो शाह होले,
0: अज्ञानी मन रोस करे,
1: अपनी प्रतीत आप ही घोवे,
0: और उसका विश्वास न हो,
1: बस्ते सागर रख है,
0: की आज्ञा मन है मथ,
1: उसके चौगन करे निहाल,
0: नानक साहिब सदा दयाल,
1: नानक पात माया के हित,
0: सर्वर होवत जान अनेत,
1: बिरख की छाया से रंग लावे,
0: ओ बिन सह ओ मन पछतावे,
1: जो दी सह सो चालन हार,
0: लपट रे होत अंधा धार,
1: घटाउ सो जो लावे ने,
0: ताको हाथ न आवे के,
1: मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई,
0: कर कृपा नानक आप ले लाई,
1: मिथ्या तन धन कुटुंब सुपाया,
0: मिथ्या होमे ममता माया,
1: मिथ्या राज जोगन धन माल,
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल,
1: मिथ्या रथ हस्ती असु वस्त्रा,
0: मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता,
1: मिथ्या ध्रो मोह अभिमान,
0: मिथ्या आप से ऊपर कर्त गुमान,
1: सिर भक्त साध की शरण,
0: नानक जप जप जीवै हर के चरण,
1: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहे,
0: मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे,
1: मिथ्या नेत्र पेकत पात्रया रूपाद,
0: मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद,
1: मिथ्या जन्म पर विकार को तावहे,
0: मिथ्या मन पर लोभ लबावे,
1: मिथ्या तन पर उपकारा,
0: मिथ्या बास लेत विकारा,
1: बेबूझे मिथ्या सब भये,
0: सफल दे नानक हर हर नाम लये,
1: बिरति साक्त की पार जा,
0: साच बिना कह हो सुचा,
1: बिरथा नाम बिना तर अंध,
0: मुखे आवतता कह दुर्गंध,
1: बिर सिमरन दिन रैन बिरथा विहाये,
0: एक बिना ज्यों खेती जाए,
1: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम,
0: कृपन के निरार्थ दाम,
1: धन तन तेजन दे कट बस्यो हर नाउ,
0: नानक ताके बल बल जाओ,
1: रहते अवर कश अवर कमावत,
0: मन ही प्रीत मुखों गंड लावत,
1: जानन हार प्रभु प्रवीण,
0: बाहर पीक न काहू भीन,
1: अवर उपदेश है आप न करे,
0: आवत जावत जन मैं मरे,
1: जिसके अंतर बसे प्रभाप,
0: जिसकी सीख तरह संसार,
1: जो तुम भाने तिन प्रभ जाता,
0: नानक जन चरण पराता,
1: करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने,
0: अपना किया आपे मन,
1: आप आप करत नबेरा,
0: किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा,
1: पाप से अनप सकल ते रहत,
0: सब कछ जाने आत्म की राहत,
1: जिस भावे तिस लये लड़ लाए,
0: शांत अनंतर रहा समाए,
1: सो सेवक जिस कृपा करी,
0: निमक निमक जपना।

0: निर्मल पुरख पुरख पत होता,
1: जय बिन मैल कहो क्या तोता,
0: जय निरंजन निरंकार निर्वाण,
1: जय कौन कमान कौन अपमान,
0: जय स्वरूप केवल जगदीश,
1: जय शल छिद्र लगत कौ कीस,
0: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे,
1: जय किसै भूख कवन तृप्तावे,
0: करन करावन करनै हार,
1: नानक करते का नहि समार,
0: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई,
1: तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई,
0: जय सर्व कला आपे प्रवीण,
1: जय वेदक देव कहा को चीन,
0: जब अपन आप आप उतारै,
1: जय शगन अपशगन कहा विचारै,
0: जय अपन ऊच अपन आप नेरा,
1: जय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा,
0: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद,
1: नानक अपनी गत जन हो,
0: जय छल अशेद अभेद समाया,
1: वहाँ कसे व्याप्त माया,
0: आप को आपे आदेश,
1: गुण का ना ही प्रवेश,
0: जय एक एक एक, एक भगवंता,
1: जय कौन अचिंत किस लागे चिंता,
0: जय अपन आप आप पतियारा,
1: जय कौन कथे कौन सुनने हारा,
0: बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा,
1: नानक आप को आपे पहुँचा,
0: जय आप रचियो प्रपंच आकार,
1: जय गुण मैं की नो विस्तार,
0: पाप गुण तह पही कहावत,
1: ओ नरक को स्वर्ग
0: काल जाल माया जंजाल,
1: मैं मोह परम पैपार,
0: दुख सुख मान अपमान,
1: अनक प्रकार की उपख्यान,
0: अपन खेल आप कर देखे,
1: खेल संकोचे तो नानक एक है,
0: जय अवगत भगत है आप,
1: जय पसरे पसार संत प्रताप,
0: तुम बापा आपे धनी,
1: उनकी शोभा उन्हों बनी,
0: आपे कौतुक करे अनंत जोज,
1: आपे रस भोग निर्जोग,
0: जिस भावे तिस आपन नाई लावे,
1: जिस भावे तिस खेल खिलावे,
0: बेशुमार अथाह अगंत अतुल,
1: ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। श्लोक
0: जी जंत्र के ठाकुरा आपे वर्तन हार,
1: नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टार, राष्ट्रपति
0: आप कथे आप सुनने हार,
1: आपे एक आप विस्तार,
0: जंत पावे तं श्रेष्ठ उपाय,
1: अपने भाने लय समाये,
0: तुम ते भिन्न नहीं किश होए,
1: अपन सूत सब जगत परोए,
0: जाको प्राप्ति आप बुझाए,
1: सच नाम सोई जन पाए,
0: सो समदर्शी तत् का बेता,
1: नानक सगल श्रेष्ठ का जेता,
0: जी जंत्र सबका के हाथ,
1: दीन दयाल अनाथ को नाथ,
0: जिस राखे तिस कोई न मारे,
1: सो मुह आज समनो बिसारे,
0: जिस सच अवर कहा को जाए,
1: सब सिर एक निरंजन राय,
0: की युक्त जा के सब हाथ,
1: अंतर बाहर जान साथ,
0: गुण निधान बेअंत अपार,
1: नानक दास सदा बलहार,
0: पूर्ण पूर रहे दयाल,
1: सब पर हो वित कृपाल,
0: अपने कर्तव्य जाने आप,
1: अंतर जामी रहो व्याप,
0: प्रत पाले जी अनुभव भांत,
1: जो जो रचियो सो तिस एहतियात,
0: जिस भावे तिस लय मिलाए,
1: भगत करे हर के गुण गाए,
0: मन अंतर विश्वास कर मानिया,
1: करन हार नानक एक जाने,
0: जन लागा हर एक नाई,
1: इसकी आस न वृद्धि जाए,
0: सेवक को सेवा बन आई,
1: हुकम बूझ परम पद पाई,
0: इससे ऊपर नहीं दी चार,
1: जाके मन बसया निरंकार,
0: बंधन तोर भय निर्वैर,
1: हर दिन पूजा गुर के पैर,
0: हे लोग सुखी है परलोक सुहेले,
1: नानक हर प्रभ आपे मेले,
0: साथ संग मिल करो आनंद,
1: गुणगावो प्रभ परमानंद,
0: राम नाम तत् करो विचार,
1: दुर्लभ देखा करो उदार,
0: अमृत वचन हर के गुण गाओ,
1: प्राण तरण का यह स्वाव,
0: आठ पैर प्रभ देखो नेरा,
1: मटिया ज्ञान बिन सह अंधेरा,
0: सुन उपदेश हृदय बसावो,
1: मन इच्छे नानक फल पावो,
0: हलत पलत दो लेहो सवार,
1: राम नाम अंतर उतार,
0: पूरे गुर की पूरी दिखिया,
1: मन बसै ते साच परीखिया,
0: मन तर नाम जपो लिब लाए,
1: दुख दर्द मन ते पहो जाए,
0: सच व्यापार करो व्यापारी,
1: दरगह निधह खेप तुम्हारी,
0: एक टेक रखो मन माहे,
1: नानक बहुर न आवे जाहे,
0: इससे दूर कहाँ को जाए,
1: उबरे राखन हार ते आए,
0: मेर पहु जपै सकल पहु मिटै,
1: प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै,
0: जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख,
1: नाम जपत मन होवत सुख,
0: चिंता जाए मिटै हंकार,
1: तिस जन को कोई न पहुँचन हार,
0: सिर उपर ठाडा गुरसूरा,
1: नानक ताके कार्ज पूरा,
0: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट,
1: दर्शन पेखत उदरत सृष्ट,
0: चरण कमल जाके अनूप,
1: सफल दर्शन सुंदर हर रूप,
0: भान सेवा सेवक परवान,
1: अंतर जामी पुरख प्रधान,
0: जिस मन बसै सोहत निहाल,
1: जाके निकट न आवत काल,
0: अमर भय अमरा पद पाया,
1: साध संग नानक हर त्याया। श्लोक
0: ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश,
1: हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। अष्टपदी
0: संत संग अंतर प्रभ बीठा,
1: ना प्रभु का लागा मीठा,
0: सगल समिग्री एक घट माहे,
1: अनक रंग नाना दृष्टा है,
0: नौ नदी अमृत प्रभ का नाम,
1: यही मैं इसका विश्राम,
0: सुन समाध अनहद तहनाद,
1: कह न जाइए चरित विस्माद,
0: दिन देखिया जिस आप दिखाए,
1: नानक ते जन सो जी पाए,
0: सो अंतर सो बाहर अनंत,
1: घट घट व्याप रहा भगवंत,
0: धर्म माही आकाश पयाल,
1: सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल,
0: अंतिम पर्वत है पार ब्रह्म,
1: जैसी आज्ञा तैसा कर्म,
0: पावन पानी ਨਿੰਦਾ ਸੰਤਰ ਮਾਹੇ
1: ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦੇ ਦਿਸੈ ਸਮਾਹੇ
0: ਇਸ ਕੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀ ਕੋ ਠਾਓ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਓ
0: ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮਹਿ ਦੇਖ
1: ਸਸਿਆ ਸੂਰ ਨ ਖਤਰੇ ਮੈਂ ਏਕ
0: ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ
1: ਆਪ ਡੋਲ ਨਾ ਕਬ ਹੂੰ ਡੋਲੇ
0: ਸਰਵ ਕਲਾਕਾਰ ਖੇਲੈ ਖੇਲ
1: ਬੋਲ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗੁਣੇ ਅਮੋਲ
0: ਸਰਵ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਂਕੀ ਜੋਤ
1: ਧਾਰ ਰਹੇ ਸਵਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ
1: ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਸਾਸ
0: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਵੇਖਣ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ
0: ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ
1: ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ

0: राम संग रचन
1: जिन जाता तिसकी एह रहत
0: सत वचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सोई सुख मानै
0: कर्म करावन हार प्रभ जानै
1: अंतर बसे बाहर पियो ही
0: नानक दर्शन देख सब मोही
1: आप सत किया सब सत
0: जिस प्रभ ते सगली उत्पात
1: जिस भावै तां करे विसार
0: जिस भावै तां एकंकार
1: अनक कला लखी नह जाए
0: जिस भावै तिस लए मिलाए
1: कवन निकट कवन कहिया दूर
0: आपे आप प्रभुर
1: अंतरगत जिस आप जनाए
0: नानक तिस जन आप बुझाए
1: सर्व भूत आप वरतारा
0: सर्व नैन आपे खनहारा
1: सगल समग्री का तना
0: अपन जस आप ही सना
1: आवन जाने खेल बनाया
0: आज्ञाकारी कीनी माया
1: सब कह मत अलिप्त रह
0: जो कुछ कहना सो आपे कह
1: आज्ञा आवे आज्ञा जाए
0: नानक जा पावे ता लय समाए
1: इससे होई सुना ही बुरा
0: उरे कहो किने कष्ट करा
1: आप भला करतूत आत्मी की
0: आपे जाने अपने जी की
1: आप साज धारी सब साच
0: पोत पोते अपन संग राज
1: ताकी गर्मित कही न जाए
0: दूसर होए ता सोजी पाए
1: इसका किया सब प्रवान
0: गुर प्रसाद नानक हो जान
1: जो जाने ते सदा सुख होए
0: लाए प्रभ सोए
1: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत
0: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत
1: धन धन धन जन आया
0: जिस प्रसाद सब जगत तराया
1: जाने अमन का यह सुआ
0: जन के संग जित आवे नाम
1: आप मुक्त मुक्त करे संसार।

0: पूरे गुरु का सुन उपदेश
1: सार ब्रह्म निकट कर पेख
0: सा सा सिमरहु गोबिंद
1: मन अंतर की उतरे चिंद
0: आस अनित त्याग हो तरंग
1: संत जना के तुहर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करहु
1: साथ संग अग्न सागर तरहु
0: हर धन के भर ले हो भंडार
1: नानक गुरपुरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद
1: साथ संग पर परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो
1: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
0: चित चितव हो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का यह आधार
0: उत्तम श्लोक साध के वचन
1: अमलीक लाल यह रतन
0: संत कमाप्त हो उदार
1: आप तरह लोक निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहत बाजय
1: सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजय
0: प्रगटे गोपाल महांत कह माथे
1: नानक उदरे तिन कह साथे
0: शरण जोग सुन सरनी आये
1: कर कृपा प्रभु आप मलाये
0: मिट गए बैर भय सबरीन
1: अमृत नाम साध संग लैन
0: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
1: पूर्ण हो ही सेवक की सेवा
0: आज जाल विकार ते रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
1: नानक नेहि खेप हमारी
0: प्राप्ति उस्तत करहो संत मीत
1: सावधान एकाग्र चीत
0: सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सो होत निधान
0: सब इच्छा ताकि पूर्ण होए
1: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब दे ऊच पाए स्थान
1: और न होवे आवन जान
0: हर तन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नव निद
1: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रकाश
1: सबके मत सगल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत् का बेता
1: समदर्शी एक दृष्टिता
0: ए पल तिस जन कै मुख भने
1: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
0: तेहो निधान जपै मन कोए
1: सब जुग मैता की गत होए
0: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
1: समृत शास्त्र वेद बखाणी
0: सकल मतांत केवल हर नाम
1: गोबिंद भगत कै मन विश्राम
0: कोट अपराध साध संग मिटै
1: संत कृपाते जमते छुटै
0: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
1: साध शरण नानक ते आए
0: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
1: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
0: जन्म मरणता का दुख निवारै
1: दुर्लभ दे तत्काल उधार
0: निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी
1: एक नाम मन माहे समानी
0: दुख रोग बिन से भय भरम
1: साध नाम निर्मलता के कर्म
0: सबते ऊच ताकी शोभा बनी
1: नानक एह गुण नाम सुखमनी
0: सबते ऊच ताकी शोभा बनी
1: नानक एह गुण नाम सुखमनी
0: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
2: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
3: Ek Oankar Satgur Prasad Asa Mahalla Chautha Shant

पौड़े बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

दीपा लोहा मंडला खंडा बिरपंडहा अंडू जेरी जुत पुजा खानी सेत जा सोमत जाने नानका सारा मेरा जनता नाग जंतु पाए कैसा माले सबनहा जिन करते करना किया चिंता भी करनी ता सो कर

पौड़ी सच्चा साहे बेग तुझने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया, मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया।

0: पहला पर गड्डी लदी है पर भरिए साथ पर बेड़ी पाई है पर गड्डी है खास पढ़िए है जेते बरस बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेके की गल और हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या

0: तुवा पूरा तपे का सत गिर बाहो कलजुगरा थगन का कूड़ा गैर बाहो
1: पहला शाम कहे सितंबर समी सच।

0: पया नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पुठानी अमल किया
1: चारे वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप भक्त करनी।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया, सबको आख पाए हुए प्राणा सटिए फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग हो वै जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे शाला ही ससूत दरगे अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी फलके थुक पवे निकदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी बे तग आया पे बते।

ओडिशा भव दयाल कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण तक।

नानक कूड रहया पर भो। मथे टिका तेड़ धोती का खाई, हाथ छुरी जगत कसाई, नील वस्त्र पैर होवे।

सुचे अगे रखियो कोई ना पिटो जाए सुचा हो के जे ब्या लगा पंछ लोक हथी जाए सटिया किसे लगा दोख अण देवता पानी देवता बैसन तुर देवता लून पंजवा पाया किरतता हो पाक पवित पापी सतन कटिया थुका पिया तित जित मुग नाम ना उचरे बिना।

प्रयात छंद नमस्तल परनामे समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासे स्वधर्मंग बेपूते।

जब अकर्ख कर करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब अकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बद

आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल वख कटे।

सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्ता सार न जानी, तत्ता सार न जानी गुरु बाजो तत्ता सार न जानी, तेहि गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहण।

0: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program, or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program, or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.
1: Family Care Pharmacy.
2: पूरे BC विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण @604581-1900।

भगत रविदास जी महाराज उस दौर विच बनारस विच पैदा होए ने, जद के भगती भाव दे संगीत नाल भारत दा कौणा कौणा सरशार होया होया सी। हर पासे भगती लहर, हर पासे भगत भावना विच डुबे हुए महापुरुष साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा वाक है, वैसे ता हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे, हर युग विच हर समय विच भगत होंदे रहने संत होंदे रहने, लेकिन भारत दा मध्य काल भगती काल मनिया गया, जिस देच चौं दिशां देच भगत ही भगत पैदा होए। उसी भगती काल देच सूफी फकीरा ने भी अपने अमर संगीत दे रहें इस देश नूं अध्यात्मिक तौर ते सरसब्ज कीता और मानसिक तौर ते उच्चा कीता, जीवन दी जाच दसी। रविदास जी महाराज उन्हां ही सिरमौर भगतां विचों एक महान भगत ने, पेशे दे चमार पर चमड़े तों

0: श्री नामदेव जी महाराज के अंदर भावना प्रधान है। दरअसल भगत नामदेव जी महाराज भावना प्रधान पुरुष ने, ते जिथे भावना प्रधान है, जज्बे प्रधान ने, बस ओही भगत है। दो तरह के मनुख ने, कोई अकल दे तल ते जीवंदा है, कोई हिरदे दे तल ते जीवंदा है, कोई बौद्धिक तल ते जीवंदा है, कोई दिल दे तल ते जीवंदा है। जीवन दे ए दो ढंग ने। जो बौद्धिक तल ते जी रहा है उस दे अंदर विचार प्रधान होवेगी, जो हिरदे दे तल ते जी रहा है उत्थे भाव प्रधान होवेगा, पर जो ना बौद्धिक तल ते जी रहा है ते ना हिरदे दे तल ते जी रहा है, वो मनुष्य ही नहीं है, वो पशु है। पशु इना दोहां थल्लां तो थल्ले ही जीवंदा है। इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, भाव प्रधान है कि विचार प्रधान है? दरअसल विचार नाल वस्तु नु समझना है, हस्ती नु समझना है, और भाव नाल हस्ती नाल जुड़ना है, वस्तु नाल जुड़ना है। अगर भाव ना होए तो जुड़ नहीं सकांगे, विचार ना होए तो समझ नहीं सकांगे। जन्म तो मनुख भाव ही लेके आंदा है। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई कि विचार नालों भाव दी आवश्यकता ज्यादा है, अधिक है। भाव प्रथम है, विचार बाद देच है। भाव करके एक मासूम बच्चा मां नाल संबंध जोड़दा है, पिता नाल संबंध जोड़दा है, भैणा नाल संबंध जोड़दा है, भरावां नाल संबंध जोड़दा है। अजे ते विचार दी दुनिया उत्थे आरंभ ही नहीं हुई, अजे ते भाव दी दुनिया। कहिंदे ने परमात्मा नूं समझण दे विच ही ज्ञानियां दा समा लंघ जांदा है, और फिर भी पूरा समझना उसनूं कठिन है। थोड़ा जिहा जो तू समझे उहनूं हुण अपनी जिंदगी दे विच प्रयोग दे विच लिया, तो हुण जज्बा पैदा कर, भाव पैदा कर, श्रद्धा पैदा कर, ते उस नाल जुड़। जितना भी तू विचारेगा, विचारां दी पहुंच उस प्रभु तक नहीं होवेगी। थोड़ी बहुत जो विचार दे राही तेनू झलक मिली है, तो हुण जुड़न दी कोशिश कर, पर विचारां दी दुनिया जो बहुत अगे लंघ जाए, महान दार्शनिक हो जाए, महान फिलोसफर हो जाए, तो फिर उस लई जज्बियां नूं पैदा करना बहुत कठिन हो जाता है। उर्दू दे अजीम शायर इकबाल दा ऐसा कहना है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है, निकल जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। ऐ बंदे अकल दी दुनिया तो अगे लंघ जा, जज्बियां दी दुनिया च पहुंच, वलवलियां दी दुनिया च पहुंच, भावना दी दुनिया च पहुंच, जे तू कोई रस लेना है, स्वाद लेना है, आनंद लेना है। हकीकत है अकल ते रस्ते दा दीव है, अकल ते रस्ते दा चानना है, ते हुण दीवे दी ही कोई परिक्रमा करदा रह जाए ते मंजिले मकसूद तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। आम आख्या जांदा है, कई दफा अंधी श्रद्धा वाला भी भटकदा भटकदा पहुंच जांदा है, पर कई दफा विचारां दी परिक्रमा करन वाला विचारां दे विच ही फसा रह जांदा है, और ईश्वर तक पहुंचना उस लई औखा हो जांदा है। विचारक अपने विचारां दे विच ही कई दफा उलझ के जो है रह जांदा है। हजारों साल फिलोसफी की तना तनी रही, खुदा की बात जहां पे थी वहीं पे रही। आखिरे कितना भी खपिए, कितना भी विचारिए, ता भी विचारदियां विचारदियां पता चलता है कि जिथों असी शुरू हुई सी उत्थे ही खड़े, एक कदम भी अगे नहीं वधे। विचार विचार के जद ऐसा पता चले कि ओ साडे विचारां च नहीं आउंदा, ओ साडी सोच मंडल दे च नहीं आउंदा, ओ साडे बौद्धिक पकड़ दे च नहीं आउंदा, बस उसे क्षण चाहिदा है कि मनुख जज्बियां नूं जन्म देवे, श्रद्धा नूं जन्म देवे, विश्वास नूं जन्म देवे, भावना नूं जन्म देवे। तो भगत नामदेव जी महाराज भाव प्रधान पुरुष ने, और आप दे अंदर जदों थोड़ा जिहा भी भाव कमजोर होंदा है, थोड़ा जिहा भी प्रेम पिछे हटदा है, तां आप तड़प के कहंदे ने, मोहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाय अकेली, पनिया बिन मीन तलफे, त्यों राम नाम बिन बापरो नामा। मैं ते तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च इंज जैसे पानी तो बिना मछली तड़पदी है, जिन्हें गऊ मां तो बिना उसका बछड़ा ओ तड़पदा है, व्याकुल होंदा है, पुकारदा है और उच्ची धुन नाल आवाज मारदा है। हे प्रभु जद भी रंचक मात्र भी विछोड़ा होवे ते विछोड़ा की है जज्बियां दा कमजोर होना, भावनावां दा कमजोर होना, श्रद्धा दा छीण होना, प्रेम दा थोड़ा जिहा बुझना, बस उस दे नाल ही भगतां दे अंदर तड़पनी शुरू हो जांदी है। कारण कि प्रेम दी अधिकता, भावना दी अधिकता, श्रद्धा दी अधिकता आनंद नूं जन्म देंदी है, रस नूं जन्म देंदी है। श्रद्धा घटी, भावना घटी, प्रेम घटिया, रस घट जांदा है। और बिल्कुल प्रेम नहीं, बिल्कुल श्रद्धा नहीं, बिल्कुल भावना नहीं, तो देखिया गया बिल्कुल कथा कीर्तन विच रस नहीं रह जांदा, बिल्कुल सत्संग विच रस नहीं रह जांदा। रस ते तां हुण बनेगा जे इस शब्द नाल, कथा नाल, कीर्तन नाल भावना जोड़ी है, श्रद्धा जोड़ी है, प्रेम जोड़ी है, तो फिर रस दी गंगा वग तुरदी है। और प्रेम मनुख नूं तृप्ति दे जांदा है, श्रद्धा भावना वाला मनुख अठे पैर तृप्त रहिंदा है, शुकराने विच रहिंदा है। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघा है। बौद्धिक तल ते जीण वाला बंदा ओ अक्सर गिलियां दे जीवदा, हे प्रभु मैं इतना कीता ते प्राप्त की होया। बौद्धिक तल ते जीवन वाला मनुख अक्सर व्यापारी हो जांदा है। तो दुनिया दे चोटी दे व्यापारी समझ लेने चाहिए ने कि बौद्धिक तल ते जी रहे ने, हिरदे दे तल ते नहीं। ते दुनिया भर दे चोटी दे संत भगत उन्हां बारे कहना पएगा कि हिरदे दे तल ते जी रहे ने। बुद्धि दा प्रयोग करदे ने पर जीवन दा केंद्र हिरदा है। व्यापारी आम दुनियादार बंदा बौद्धिक तल ते जीवदा है, विचारां दे तल ते जीवदा है, श्रद्धा दा ते एवें कदी कदी अपनी गरज दी पूर्ति लई इस्तेमाल करदा है, वरतों करदा है। और इस तरीके नाल श्रद्धा भी अपवित्र हो जांदी है, इस तरीके नाल ओ प्रेम भी धुंधला ते मैला होंदा है। तो भगत नामदेव जी महाराज कहिंदे मैं ते इंज तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च, ते विछोड़ा उदो ही आउंदा है जद प्रेम मध्यम पैंदा है, जद श्रद्धा छीन आउंदी है, जद किधरे भावना नूं सट लगदी है, जद किधरे विश्वास कमजोर आउंदा है, उदो रस आनंद और सुकून भी एक पासे हो जांदा है। तो तड़पना ते कुदरती गल है, शुरू होवेगी मोहे लागती ताला वेली बछरे बिन गाय अकेली। इस तरह भावपूर्वक जीवन बतीत करने वाले ने श्री नामदेव जी महाराज। सिर्फ आप दे अंदर भावना ही प्रधान नहीं, बल्कि आप दे कोल विचार भी ने। ऐसा ना समझ लिया जाए कि भगत विचार बिल्कुल नहीं रखते, नहीं, उन्हां दे जीवन दा केंद्र ते श्रद्धा है, उन्हां दे वर्तन वाले वे विच विचार है। वो वस्तु नूं समझदे ने, विचार नाल जुड़दे ने, भावना नाल। परमात्मा दा थोड़ा बहुत बोध हासिल करके जैसे वो प्रभु नाल भाव करके जुड़दे ने, तो परमात्मा दी बहुत वड्डी सूझ भगतां दे कोल आउंदी है। भावें आम दार्शनिक फिलोसफर बहुत कुछ पढ़िया लिखिया होवे, तां वी उतनी सूझ नहीं रखेगा जितनी कि भगत कोल है। एक अनपढ़ भगत कोल भी जितना परमात्मा दा ज्ञान है, उतना चोटी दे पढ़े लिखे कोल भी नहीं होवेगा, क्योंकि भगत ते जुड़े है, भगत ने ते रस माणे है, भगत नूं ते उसदी होंद दा पूर्ण तौर ते पता है, क्योंकि वह जुड़िया होया है। ते फिलोसफर दार्शनिक विचार वह ते सिर्फ विचार कर रहा है, वह ते सिर्फ विचारां दे तल ते जी रहा है। इस वास्ते भगतां ने ऐसा आख्या भी है, भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज कहिंदे ने, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न तरसे, लोहा कंचन रिंड होए कैसे, जो पारस नह परसे। श्री कबीर जी महाराज का भी ऐसा कहना है, हर जस सुने न हर गुण गावे, बातन ही असमान गिरावे, ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहज, तिन ते सदा डराने रहिए। ए भगत ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ। ਔਰ ਜਦ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਗੀਤ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਝਰਨਾ ਵਗ ਤੁਰਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤਨੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਗਾਥਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਮਾਂਜੀ ਹੋਈ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨੇ ਨੇ, ਬਗੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਠਾਕਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਪਿਲਾ ਗਊ ਹੈ ਉਸਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਕ ਹੈ ਤੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਗਰ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਗਾਗਰ ਖੂਬ ਮਾਂਜੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਮਛਲੀਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਕੁਛ ਮੈਂਢਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਕੁਛ ਕਛੂਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮਰ ਗੀਤ ਦਾ ਝਰਨਾ ਇੰਜ ਫੁੱਟਿਆ। ਆ ਨੀਲੇ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈ ਲੈ ਉਦਕ, ਠਾਕਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਪਰ 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਜਲ ਮੇ ਹੋਤੇ, ਬੀਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੀਠਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਠਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਬੀਠਲ ਮੰਦਿਰ ਪੰਡਰਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੀਠਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਗਾਗਰ ਮਾਂਜੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ 42 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਤੇ ਆਖਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ, ਔਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗਣਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 42 ਲੱਖ ਜਲ ਦੇ ਚ ਨੇ, 21 ਲੱਖ ਥਲ ਜੰਤੂ ਨੇ ਔਰ 21 ਲੱਖ ਨਭ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 84 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਧਾ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਨਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਰਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਖਾਲੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਫੁੱਟੀ ਹੈ ਗਾਲਬਨ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਕ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਇਤਨੀ ਉਜਵਲ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਲ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵਾਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਬਗੀਆ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭੌਰੇ ਤਿਤਲੀਆਂ। ਆਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੀ ਇਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਰਸ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਪਾਵਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਭੌਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਰਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲਿਆਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋ ਕੇ ਹੇ ਠਾਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭੌਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਨੀਲੇ ਫੂਲ ਪਰੋਈ ਲੈ ਮਾਲਾ ਠਾਕਰ ਕੀ ਹੋ ਪੂਜ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਸ ਲਈ ਹੈ ਭੌਰੇ ਬੀਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਹੂ ਬਹੁ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾ ਲੈ ਚਰਾਓ, ਅਵਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਓ, ਦੂਧ ਤਾ ਬਛਰੇ ਥਨੋ ਬਿਡਾਰਿਓ, ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਲ ਮੀਨ ਬਿਗਾਰਿਓ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਲ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਨ ਨੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭੌਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਕਪਿਲਾ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਣਾ, ਤੋ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਊ ਚੋ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗਊ ਦਾ ਬਛੜਾ ਖੋਲਿਆ, ਬਛੜਾ ਥਣ ਚੁੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬਛੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲੇ ਬਛੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗਊ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੋਗ ਮੈਂ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਆ ਨੀਲੇ ਦੂਧ ਰਿਧਾਈ ਲੈ ਖੀਰਨ, ਠਾਕਰ ਕੋ ਨੈਵੇਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੂਧ ਬਿਤਾਰਿਓ ਬਛਰੇ ਬੀਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਹੇ ਬੀਠਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁੰਗ ਗਿਆ ਬਛੜਾ, ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਧ ਤਾਂ ਬਛਰੇ ਥਨੋ ਬਿਟਾਰਿਓ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਨੀਲੇ ਦੂਧ ਰਿਧਾਈ ਲੈ ਖੀਰਨ, ਠਾਕਰ ਕੋ ਨੈਵੇਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੂਧ ਬਿਟਾਰਿਓ ਬਛਰੇ ਬਿਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਿਠਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਛੜੇ ਨੇ ਪੀ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭੋਗ ਲਵਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਬਛੜਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਭੋਗ ਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੂਠਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਵਾਂ? ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਦੇ ਚ ਪਿਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਤਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਚ ਆਪ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮਰ ਧੁਨੀ ਇੰਜ ਉੱਠੀ, ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਊਬੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ, ਪੂਰ ਰਹੋ ਤੂੰ ਸਰਵ ਮਹੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੱਛੀ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ? ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਓਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਜਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਮੈਲਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੈਲਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਵੱਛ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ? ਤੂੰ ਜਲ ਜੰਤੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ? इंज ब्रह्म ज्ञान दा पूर्ण बोध भगत नामदेव जी महाराज दे अंदरों पैदा होया। हे प्रभु जल दे चितों मच्छी दे चितों तू ते व्यापक है, इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थन अंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। श्री नामदेव जी महाराज अगां फुल्लां बारे ऐसा कहिंदे ने, हे प्रभु जद मैं सोचिया कि तेनू फुल्लां दी माला बना के पहनावा ते तू तितली होके शहद दी मक्खी होके भौरा होके आप ही पहले रस ले लेना है, तेनू की मैं माला पहनावा। जद मैं सोचिया तेनू दुध पिलावा पर तू बछड़ा होके आप ही पहले दुध पी लेना है, आप ही भोग ला लेना है, गऊ तू बछड़ा तू दुध तू तू ही तू है, इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थन अंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। इत्थों ऐसा भी पता चलता है कि श्री नामदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म दे उपासक ने, व्यापक ब्रह्म दे उपासक ने। आप दे ऐसे बोल भी ने, हिंदू पूजे देहुरा मुसलमान मसीत, नामे सोई सेविया ना देहुरा ना मसीत। हिंदू लभदा है मूर्तियां देच प्रभु नो, मुसलमान लभदा है खानकाह देचो, पर नामदेव जी महाराज कहंदे ने मैं ते जिधर देखदा तेरे तो बिना कुछ है ही नहीं, तू ही तो है। इसनो श्री नंदलाल जी महाराज ने इंज बयान कीता है, ब्राह्मण मुश्ताक के बुद्ध जाहिद फिदाए खानकाह, हर को जा जामे मुहब्बत दीदायम सरशारस्त। ब्राह्मण लभदा तेनू बुतां दे चों और मुस्लिम लभदा तेनू खानकाह दे चों, पर हर को जा जामे मुहब्बत, मैनू ते हर थां ते तेरी मुहब्बत तेरा प्यार ही दिखाई देंदा है, चाहे वो मंदिर है चाहे वो मस्जिद है, हर पासे तू ही तो है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहंदे हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीद, नामे सोई सेविया ना देहुरा ना मसीद, तो फिर किथे है? जे मंदिर ते मस्जिद दे च नहीं तो फिर किथे है? तो नामदेव कहंदे सबे घट राम बोले, राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे, मेरा राम घट घट दिच बोल रहे है, और राम तो बिना कौन बोल सकता है, राम ही बोल रहा है, पशुआं दिच राम ही बोल रहा है, पक्षियां दिच राम ही बोल रहा है, मनुखां दिच राम ही बोल रहा है, पवन दी शांशां दिच राम ही बोल रहा है, सागर दे गर्जन दिच बदलां दे गर्जन दिच, और सागर दी गर्जन दिच ही नहीं प्रभु बोल रहा है, कोयल दी कू दिच बुलबुलां दे चहचहाण दिच, हे प्रभु तू ही ते बोल रहे हैं। सबे घट राम बोले, राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे, हे प्रभु तू ही बोल रहे हैं, सब घट दे अंदर बोल रहे हैं। तो इस तरह जो व्यापक ब्रह्म है, इस तरह का जो व्यापक परमात्मा है, श्री नामदेव जी महाराज उसके पुजारी ने नामदेव जी महाराज की दृष्टि दे प्रभु एक व्यापक सत्ता है, वो अखंड ज्योति है, खंडित नहीं है, टुकड़िया टुकड़िया दिच नहीं है, अखंड ज्योति है, व्यापक है, पर उस तक किवें पहुंची है ते उसनू किवें प्राप्त करिए, नामदेव दे ये आखरी बोल आप जी दे समक्ष भेट करा। श्री नामदेव जी महाराज दा फरमान, ज्यों जल मांझे माछलो मार्ग पेखणो न जाई, ज्यों आकाशे पंखी अलो खोज निरखो न जाई। उस प्रभु नू किवें तलाश करिए ते उस परमात्मा तक किवें पहुंचिए जो व्यापक है, किवें पहुंचिए, मार्ग की है आखिर रस्ता की है। तो नामदेव कहंदे ने जैसे जल विच मच्छी चलदी है ते रस्ता बनदा है, उंज बना बनाया कोई रस्ता नहीं है, बना बनाया कोई मार्ग नहीं है, चलदिया ही मार्ग बनदा है, आसमान दे बने बनाई कोई सड़क नहीं है, पंछी उड़दा है ते मार्ग बनदा है, उंज कोई मार्ग नहीं उंज कोई रस्ता नहीं, बस उड़दिया ही रस्ता बनदा है, ते मच्छी दे चलदिया ही सागर दे मार्ग बनदा है, उंज कोई मार्ग नहीं। मनुख जैसे जैसे राम दा रटन करना आरंभ कर देंदा है, राम दा मार्ग बनना भी शुरू हो जाता है। गुरु गुरु दी आराधना जैसे मनुख आरंभ कर देता है, गुरु गुरु दा नाम लेना जब शुरू कर देता है, तो गुरु दा मार्ग भी बनना नाल शुरू हो जाता है। बना बनाया मार्ग नहीं है, इत्थे जपदिया मार्ग बनेगा, इत्थे नाम उचारण करदिया ही मार्ग बनेगा। जमीन दे उत्ते सानू बनिया बनाईया सड़कां मिल सकदियां, चलना सानू पैंदा है, सड़क नहीं बनानी पैंदी। पर इत्थे अध्यात्मक मंडल दे उत्ते ऐसा है कि असी जब चलांगे तो चलदिया ही सड़क बनेगी। जैसे असी पृथ्वी ते भी कई दफा देखने हां कि लगातार मनुख किसी एक थां तो लंघन तो अपने आप पगडंडी बन जांदी है, एक रेखा बन जांदी है, एक मार्ग बन जांदा है। अध्यात्मक मंडल विच ऐसा है, वाहिगुरु जपना आरंभ कर देंगे, बस आरंभ करदिया ही मार्ग बनता है। जैसे मच्छी चले तो रस्ता बनता है, उंज कोई रस्ता नहीं। इत्थे इंज पहुंचना है परमात्मा तक, जिवें मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचती है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरे थां तक पहुंचता है। इसनु खोलिया परम दार्शनिक संत गुरु घर दे वेद व्यास भाई गुरदास ने। गुरुमुख खोज अगम है, ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा। गुरुमुख खोज अलख है, ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। गुरुमुख जिड़ा है वो परमात्मा दी खोज इस तरह कर लेंदा है जिवें सागर विच मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदी है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदा है। बिना मार्ग दे उड़दिया ही मार्ग बनता है, चलदिया ही मार्ग बनता है। इस तरह गुरु का सिख जद जपदा है तो जपदिया ही जपदिया परमात्मा तक पहुंच जांदा है, ईश्वर तक पहुंच जांदा है, अकाल पुरख तक पहुंच जांदा है। हू बहो श्री नामदेव जी महाराज यही कुछ कह रहे ने, मार्ग बना बनाया नहीं है। राम राम जपदिया ही राम दा मार्ग बनेगा और राम दी लीनता नसीब होवेगी। राम नाम विच लीन, बिठल बिठल दिच लीन। श्री नाम देव जी महाराज अपने गीतां दे राहीं जगत नूं बिठल दिच लीन करदे रहे, राम दिच लीन करदे रहे। और भ्रमण करदिया करदिया अनेकां नूं आपने राम दिच लीन कीता, बिठल दिच लीन कीता। और लीन करदिया करदिया एक दिन आप सिर्फ मानसिक तौर ते नहीं शरीरक तौर ते भी उस बिठल दिच लीन हो गए, उस प्रभु देच लीन हो गए। और लीनता ऐसी हुई, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ। 4 ਪਾਉਂਡ ਇੰਡੀਕਨ ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ ਲਵੋ 3.88 ਦਾ ਬੈਗ, 2 ਪਾਉਂਡ ਪਲੇਨ ਗੁੜ 2.98 ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੋਮਾ ਟੋਮੇਟੋਜ਼ 98 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਯੂ ਹੈਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ।
3: ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਗਗਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ। 6043491313 ਯੂਨਿਟ 103 8140120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, 6043491313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ, ਦਾਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।